0: Radio. Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Oh no, we'll be late.
7: We'll be all right. I'll call the AA.
8: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
9: It's the final days to get a massive 30 months interest-free store-wide at Big Save. Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Save's big whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Must end Monday only at Big Save.
10: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: Award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
13: कहानी of Indelible Homes.

0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
4: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
6: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Maddie didn't think she needed a DVS system.
2: I've got a heat pump.
1: That should do.
2: But it didn't do it, did it, Maddie?
1: No. My windows wouldn't stop crying condensation.
2: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: This is a public savings message from Briscoes. For two cold days only, take half price off all electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets, plus even more savings store wide. End Sunday at Briscoes. See you online for details.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
0: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर, एकदम रियल। इंडियाज फर्स्ट 2,000 crore फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल, स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
8: एक जबरदस्त कहानी है।
6: और टाइटल क्या है फिल्म का?
8: वेलकम टू द जंगल।
0: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
9: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पाएं सिर्फ रोवा पर।
1: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like. And once I'd calmed down, I'd actually do something like.
4: Imagine winning $15 million this Saturday. Play in store or online.
5: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
6: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
7: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
8: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
7: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
8: Mashallah, bahut acha, very nice.
9: Oh my, oh my, Bray South Road, greater than ever.
10: South Auckland's buses just became a lot better.
9: Weymouth Road, way better buses.
10: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
9: Woody, no worries, MIT, A-OK.
10: Search AT Better South Auckland Buses for details.
9: Airport, got your transport.
10: Then turn up and go.
11: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: This is a public savings message from Briscoes. For two cold days only, take half price off all electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets, plus even more savings store-wide. End Sunday at Briscoes. See online for T's and C's.
5: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner.

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बस।
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली ओ चली
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली चली चली
1: गोकुल की

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or creating beaded animals to painting a Matariki masterpiece, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
2: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
3: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हम

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye. Wo khushbu aur wo asli masalo ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: जबरदस्त हिट्स
6: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
5: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ये है सैटरडे बॉलीवुड बज़।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free Power Shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
7: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
9: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
0: कभी भी कहीं भी. ये है सैटरडे बॉलीवुड बस.

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: Otara, oh yeah.
5: South Auckland's buses just became a lot better.
4: Grey South Road, now even greater.
5: With better bus routes, more frequent buses, and more.
4: Weymouth Road, way better buses.
5: Search AT Better South Auckland Buses for more.
0: Still pretending a hoodie is enough? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is on now, with great deals on puffers, merino, fleece, rainwear, and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.

0: शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance. And $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
8: I wanna see you dance. The DJ Mix, only on Hum. I wanna see you dance.

0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
2: Film बिल्कुल fake और danger एकदम real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
3: एक जबरदस्त कहानी है.
4: और title क्या है film का?
3: Welcome to the Jungle.
2: Welcome to the Jungle now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम डैड, आई फील सिक।
2: यप, वी हैव ऑल बीन देयर एंड सो हैज सी लेग्स। For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
3: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
4: Sorry about that.
3: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
5: DJ Mix, only on Hum.

0: Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Discover the magic at Go Bananas Child. जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो हम हमेशा आपके पास हैं
5: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस
4: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स और सबसे खास बात गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम तो देर मत कीजिए कॉल 0800 4626 26 26 टुडे
5: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस टीज़ एंड सीज़ अप्लाई

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. Non-stop Bollywood.
5: Pooja ke ghar pe shiddat ke saath karte hain.
0: Hum playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Flight.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू,
1: कभी 101 कभी 102,
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू,
1: कभी 101 कभी 100।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Playing Bollywood's biggest hits.

0: Streaming on Rover.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: As a baby, I was burnt in hot water.
5: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
6: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
7: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हाँ, वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Put your head to Gandhi.
6: Night Flight on Hum.
7: हेलो हेलो हेलो साहिबान कदरदान,
8: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
9: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
3: Winter आ गया है at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson with deals on Karcher 18 volt garden skins or 20% off Mica thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: And award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
13: Kahani of Indelible Homes.
14: As a baby, I was burnt in hot water.
15: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
16: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
17: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight on

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua West में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
1: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इजाजत।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ 7 बजे के बाद आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन विन अ डबल पास टू गो टू द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान्स कॉन्सर्ट हियर इन तामिकी मिकोरा ऑकलैंड

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरज़ू आपके साथ। एंड एक सॉन्ग के बाद आई विल लेट यू नो कौन सी बॉलीवुड मूवीज न्यूजीलैंड के थिएटर्स में रिलीज होने वाला है सून इन द नेक्स्ट सिक्स वीक्स, एंड ऑल्सो अ मूवी दैट हैज जस्ट ड्रॉप दैट यू माइट वांट टू वॉच इन द थिएटर सून।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूं आरजब के साथ विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो के पॉडकास्ट सुनने के लिए टेक्स्ट थ्रू BF 5599 एंड दे विल बी बैक ऑन द शो टुमारो एट 6 AM

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. एंड गेस व्हाट, शाहरुख खान की 34 years हो चुका है बीइंग इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. वूहू, कांग्रेचुलेशंस टू एसआरके किंग खान. एंड या सो टू सेलिब्रेट दैट एंड टू मार्क 34 years since his first debut film जिसका नाम था दीवाना, उन्होंने मैंगलोर जाके ही विजिटेड there, just you know, because that's where he spent his early childhood, and he danced with the fans, greeted them in Kannada, also like just spent a great time there. And that is so wholesome, the way he wanted to celebrate his 34 years of you know, being in the industry and dominating it. Really love massive love to Shah Rukh Khan, and yeah, he is a legend.

0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
6: This is a public savings message from Briscoes. For 2 cold days only, take half price off all electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets, plus even more savings store-wide. In Sunday at Briscoes. See online for T's and C's.
7: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 week at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 week, on now at Pack and Save.
8: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
9: The story begins in 2007.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
5: We pulled it off, Johnny. We're rich.
6: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
5: What? You're kidding me? They'll be covered in your fingerprints.
6: Oh, Pete. I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
7: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drive wear and smudge resistant. With two pairs from $169 or above. Limited time, condition supply.
6: I think I dropped my wallet too.
8: Freezing on the way to the car every morning? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is now on, with up to 50% off branded gear and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
9: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock, and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
10: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
11: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
13: Zabardast hits. Shuru ho jaye to ruk nahi. Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
14: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट्स और मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड जस्ट अ लिटल फन फैक्ट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, नेहा कक्कर के जो रीसेंट रिलीज्ड गाना है जिसका नाम है फंडा, वो गाना में वो म्यूजिक वीडियो में देयर इज अ डांसर एंड वो डांसर का नाम है ईवा गिरी एंड शी इज नेपालीज़। सो वो नेपाल से है एंड जस्ट वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू ईवा बिकॉज हर परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। इतना जोश एंड इतना लचक, ओह माय गॉड, ब्यूटिफुल डांस एंड शी लुक सो गुड too. And of course, shout out to Neha Kakkar because it's such a catchy song. Let's have a little listen.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. वर्ल्ड कप की मैचेस आज की फर्स्ट टू मैचेस आर स्टार्टिंग सून, लेस देन 10 मिनट्स ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुका है. एंड आई गेस वन ऑफ द मैचेस आउट ऑफ टू इज पानामा वर्सेस इंग्लैंड, जो 9 o'clock में किक ऑफ होगा. साथ में ही क्रोएशिया वर्सेस घाना इज ऑल्सो हैपनिंग at 9 o'clock. Obviously with having different locations for World Cup, this is this is why we have two matches going on at the same time. And aaj aakhri din bhi hai group stage ka. Kal se it's gonna be knockout stage shuru hoga, round of 32. But yeah, good luck to the teams, and if you're supporting any of the teams, good luck.

से लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू ट्राई विन यू अ डबल पास फॉर राहत फतेह अली खान बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी डन द कंटेस्टिंग अर्लियर दिस मॉर्निंग, बट होपफुली जस्ट कीप इट बिटवीन अस एंड डोंट टेल द बॉस एंड बट आई विल गिव यू अनदर चांस टू विन अ डबल पास टू राहत फतेह अली खान शो जुलाई 25th. आई विल लेट यू नो मोर आफ्टर फ्यू सॉन्ग्स.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में हूं अर्जव के साथ. करेंटली इफ यू डोंट नो अभी वर्ल्ड कप की मैच हो रहा है. There's a match between Panama versus England as well as Croatia versus Ghana. So two matches are going on at the same time. You can watch it together. आपके लैपटॉप में और टीवी में या फिर यू नो बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू मैचेस. बट या ऑल द बेस्ट टू द टीम्स एंड दिस इज द फाइनल वीक ऑफ ग्रुप स्टेज. वी बी इन फॉर राउंड ऑफ 32 फ्रॉम मंडे व्हिच इज टुमारो.

0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ. नेक्स्ट अप आई विल बी शेयरिंग यू सम ऑफ Not some, actually, the top 10 weirdest laws in different countries. And reading, I mean, like, just looking at this right now, I'm like, oh my God, I'm so grateful ki meri country mein, this is, like, normal and this is not illegal.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिग सेट्स और मैं हूँ अर्जाव के साथ. एंड शान ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स. यू नो ग्रोइंग अप आई लिसन टू हिज सॉन्ग्स अ लॉट. एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू में ही रिवील्ड दैट देयर वाज अ सॉन्ग दैट ही ऑलमोस्ट रिजेक्टेड बट ही डिड इट एनीवे एंड इट वाज अ हिट सॉन्ग. एंड दैट सॉन्ग वाज नन अदर देन दिस वन. Can you hear it? Yes. Behti Hawa Sa Tha Wo from Three Idiots. So this was a song that he almost rejected, which is crazy because without his amazing voice. Oh. Tha Wo. Oh my God, I can't even imagine anyone else sing this song. It's so good. And to be honest, let's listen to this song. Yeah, let's put it in the playlist. This song coming right now. Behti Hawa Sa Tha Wo from Shan.

0: फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सभी आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: When you're in the loop with ANZ and you spend on a new lippy,
3: fabulous!
2: Money loops back.
3: Fabulous!
2: Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
4: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
5: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
10: Sorry about that.
9: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
10: Kogan Mobile. True Aussie value.
9: Terms and conditions apply.
11: This is a public savings message from Briscoes. For two cold days only, take half price off. All electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets. Plus, even more savings store-wide. End Sunday at Briscoes. See you online for T's and C's.
0: Brewing good vibes, Sunday style.
12: Sunday breakfast on Hum.
0: Zaika to feel hope. Tickle your taste buds.
13: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजू आपके साथ। इफ यू लव टू लिसन टू नॉन स्टॉप सूफी एंड कवालीज, चेक आउट आवर म्यूजिक स्टेशन ऑन रोवा, ROVA, ऑन द एप स्टोर या फिर प्ले स्टोर और rova.nz, एंड यू कैन लिसन टू आवर प्लेलिस्ट कॉल्ड राहत फतेह अली खान, एंड ही इज आल्सो कमिंग टू आउट द रोवा ऑकलैंड नेक्स्ट मंथ ऑन जुलाई 25th।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. न्यूजीलैंड आर्ट्स एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट इज ब्रिंगिंग यू राम लीला अ डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ऑन 8th of August 2026. दिस मोर डिटेल्स टू कम बट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम स्टॉल इंक्वायरीज सो इफ यू लव टू ओपन अ स्टॉल देयर देन कॉल अशोक ऑन 021-179-5459.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. एंड लास्ट संडे आई आस्क्ड यू गाइस कि इफ आपके पास कोई डेडिकेशंस है, मैसेजेस है, लेट मी नो 5599 पर एंड आई विल कम बैक टू इट टुडे. सो या इफ यू हैव एनी डेडिकेशंस या फिर मैसेजेस दैट यू वांट टू सेंड इट थ्रू, लेट मी नो 5599 पर एंड आई विल डू दैट फॉर यू नेक्स्ट वीक. सो फॉर टुडे वी हैव अ मैसेज फ्रॉम भाव्या सिंह. हेलो भाव्या जी. And the message says, hey Arzu, hope you're having a fun Sunday. My husband and I are listening to your show right now. Thank you so much. I'd like to dedicate a song to all the wonderful husbands from their wives. So yeah, shout out to Bhavya Ji. Ye song Bhavya Ji ki husband ke liye and all the amazing, wonderful husbands out there. This one's from your wives.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूं आरजव के साथ. नेक्स्ट अप आई लेट यू नो कौन सी बॉलीवुड मूवीज न्यूजीलैंड की मूवी थिएटर्स में रिलीज होने वाला है. वी हैव गॉट सम एक्साइटिंग मूवीज लाइक धमाल 4 से अल्फा. इट्स ऑल कमिंग सून टू आवर थिएटर्स. सो या वी विल लेट यू नो सो यू कैन वॉच आउट.

0: हजार बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
5: Ek zabardast kahani hai.
6: Aur title kya hai film ka?
5: Welcome to the Jungle.
4: Welcome to the Jungle, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films, rating TBC.
7: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
8: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
9: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
9: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
11: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
12: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
13: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
14: Chill, sip, smile.
15: This is Sunday Breakfast.
16: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में हूं आरजू आपके साथ। वर्ल्ड कप की आज आखिरी दिन है फॉर ग्रुप स्टेज एंड करेंटली कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल हो रहा है एंड आल्सो साइड बाय साइड डीआर कॉन्गो और उज़्बेकिस्तान की भी मैच हो रहा है एंड एट 2 PM वी हैव अल्जीरिया वर्सेज ऑस्ट्रिया एंड देन एट द सेम टाइम एट 2 PM वी ऑल्सो हैव जॉर्डन वर्सेज अर्जेंटीना। सो दीज आर गोना बी योर फाइनल मैचेस ऑफ द डे एज वेल एज ग्रुप स्टेज एंड राउंड ऑफ 32 विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो।
14: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
17: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
14: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
16: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं हूं आरजू आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन and I hope you had an amazing morning and I hope you have an amazing rest of your day and yeah, make the most of today because obviously the weather has not been good recently, but yeah, have fun and I'll see you next week, same time, same day.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर हम टाइम चेक to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
1: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at midday. A man has been arrested after a serious assault at a West Hamilton service station. Police say they were called to Avalon Drive at about 10 p.m. yesterday. Two people were rushed to hospital in a serious condition. A 20-year-old man faces charges of wounding with intent to injure and cause grievous bodily harm. Both southbound lanes of State Highway 2 between Petone and Nauranga are now open. Floodwaters have also dropped on a stretch of State Highway 2 near Tauwhanganui-Nikau, with both lanes now open. However, State Highway 53 remains closed at Waihinga Bridge near Martinborough due to flooding. Otago residents are being asked to keep an eye out for more African feathergrass. The pest plant has cropped up in the Napata area. The regional council's Robert Wynne says don't touch it, as trained staffers will cull it for free.
2: Probably our biggest concern is if people remove it themselves and go dump it on the riverside or something like that. And that's when it can create another area that we'll have to go treat.
1: Rescue teams in Venezuela are continuing to find survivors nearly 3 days after the country was rocked by a pair of powerful earthquakes. Multiple videos show people being pulled from the rubble of buildings around 72 hours after the quake struck. More than 50,000 people are still missing. White Ferns captain Amelia Kerr has front-footed the team's lacklustre effort as defending champions at the Cricket T20 World Cup, which ended in a 9-wicket loss in group play to England.
3: We are the first to recognise it's been a disappointing campaign for us.
1: New Zealand scored 163 for 6. In reply, England made 164 for 1 with 16 balls to spare. And a blemish-free third round for Dame Lydia Ko at the Women's PGA Championship. She's 2 under and tied 25th, 9 shots behind the leader.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
4: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
5: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मायावती और स्वर्गीय बसंत कुमार के पुत्र सुहेशना अथवा सुहेना के पिताजी सुमनलता कुमार के पति बिरम कुमार के भतीजा एयर कस्टमर्स न्यूजीलैंड के ओनर सुजयंत कुमार की मृत्यु मिडलमर हॉस्पिटल में हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम्स एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वेरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि के लिए आप 02102461915 पर संपर्क कर सकते हैं या 56 सारली ड्राइव मनुरेवा जा सकते हैं. एयर कस्टमर्स न्यूजीलैंड के ओनर सुजयंत कुमार की मृत्यु मिडलमर हॉस्पिटल में हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंड्स फ्यूनरल्स होम्स एंड ऑनसाइट क्रीमेशन से लेवल बोल्डरवुड प्लेस वेरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि के लिए आप 02102461915 पर संपर्क कर सकते हैं.
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
5: नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑकलैंड. कैसे हैं आप सब? यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सा प्रोग्राम लेकर मैं यानी रक्षा आज आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ, शामिल हो चुकी हूँ. और आपका और मेरा जो ये सफ़रनामा है, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़रनामा जो है ये चलने वाला है अगले 6 घंटे, जहाँ पर मैं और आप करने वाले हैं बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए मैं लेकर आऊँगी बैक टू बैक. बट उसके साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है इस वीकेंड के बारे में है, वो है मौसम. भाई क्या खूबसूरत वेदर है. इवन घर के अंदर बहुत सारा काम बाकी है तो भी मन नहीं कर रहा उस काम को